दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए सतनाम। श्री वाहिगुरु जी सुही महला पंजवा, जाकै दर्श पाप कोट उतारे, भेटत संग हे पवजल तारे। जाकै दर्श पाप कोट उतारे, भेटत संग हे पवजल तारे।

तन्या पत्थर ने सुनते फरियाद किसे की, तन्ने ने अखा खोली आखिया जाओ जी जाओ, मेहनत नहीं जाती बर्बाद किसी की। हूं अगली शाम भी पै गई तन्ना, हूं आ गया है अपने जटपुणे से भगवान, हूं तू मेरे वाल देख ले, मेरिया आंदा हूं भुखिया बिलक रही हैं, हो सकता है तेनू पंडित ने कुछ तरोताजा चीज खुआई हो, तेनू भुख नहीं लगती। जिस तरह दूसरे दिन का दोपहर आया तन्ना बजट बचा गया।

पत्थर दे विचों हाथ बाहर निकलिया। तने ने आख्या इवें ते गल नहीं बननी, ठाकर जी पंडित दे सामने साक्षात बैठ के रोटी खावे।

ठाक ते सौ खा के दसो तुम ठाक कि दिसदा तनिया मैं उन्हें दिसदा सच आखते हो हां तनिया सच आखदा ठाकर जी तुम मैनू दिसते हो इसका मतलब तुम तलोचन भी दिसते होवोगे नहीं तनिया मैं भैड़िया अखा वाल नहीं दिसदा जिन्हों का मन होर दुख होर हो मैं नहीं उन्होंने दिसदा फिर भगवान जे तू मेरे कोल रहना है तो फिर तेन तरलोचन दर्शन देने पैणगे तनिया नहीं यह झूठ।

हो जाएगा दर्शन पेट से होत निहार। साध के संग कलुकत हरे, साध के संग नरक पर हरे, साध के संग इया उआ सुहेला, साध संग बिचरत हर में। ए लोक भी सुखी होंदा है ते परलोक भी सुहेला हो जांदा है।

बहुत प्रसाद करावे, पाठ करावे, पर जे निंदा हो गई ओ भी किसे महापुरख दी, ते कोई भी कीता होया कर्म फलीभूत नहीं हुंदा। जेड़ा

जीवन एक कलमे कहवत ममेल दर ले ले का पीड़ छुट्टे नान का जो तेल पौड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही ते तारिए आपे ही करना क्यों कल आपे ही ते तारिए देख किता अपना तर कच्ची।

का खालसा। वाहगुरु जी की फतेह, वाहगुरु जी की फतेह, वाहगुरु जी की फतेह। पौड़ी वडे कियां वडियाईयां, किस कहना कहना जाए।